0: गुरु प्यारी गुरु स्वरी गुरु सत्संग इतनी आज प्रवान करने दस दस होइयां बेअंत भुलां दी खिमा अगला प्रोग्राम श्रवण करो दस इथे बुलाओ फते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ये हन बहुत ही सत्कारयोग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र दरबार दे कीर्तनीय सिंह रागी भाई सुखजीत सिंह जी कोहाड़ का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जिन्हां ने आप जी नूं अमृत गुरबाणी आरती आरता शब्द कीर्तन सरवण करवाया है। संगतां वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जीओ मेरी पीरी दिवस नूं समर्पित विशेष शाम दे दीवान चल रहे ने, ढाडी दरबार चल रहे ने जो कल तक चलणगे। 23 जुलाई तो लैके 2 अगस्त तक आत्म रस कीर्तन दरबार सजाए जाणगे। 28, 29 ते 30 जुलाई 3 दिन 31 रागां दे आधार दे उपर कीर्तन राग दरबार सजाया जाएगा। समा शाम दे 6 तो रात दे 9 बजे तक दा होया करेगा। 2 अगस्त दिन एतवार सवेरे 6 बजे अमृत संचार होवेगा। अमृत पान करके गुरु महाराज जी धीआं पुत्र सजो। हुण बहुत ही सत्कार जो ज्ञानी कुलदीप सिंह जी विद्यार्थी दमदमी टकसाल उन्हां तों चल रिहा लड़ीवार इतिहास कथा विचार सरवण करदे आ। साध संगत जीओ संगतां नूं बेनती है बीबियां नूं के लंगरां विच पहुंच के लंगर विच पहुंच के प्रशादे बनाउण दी आप जी सेवा जरूर निभाया करो। तो साध संगत जी ओ दूसरी बेनती है कि जदों भी आपां कड़ा प्रसाद दी देग लैंदे आ एक थां ते बैठ के आपां देग छक लिया करिए जी। छकदे जदों आपां जाने आ थां थां दे उपर प्रसाद दे किण के डिगदे ने ते बेअदबी हुंदी है। लंगर विच भी बेनतियां आईयां ने कि भी जदों आप जी प्रसाद छक लैंदे ओ हथ जूठे ही कई संगतां सुचियां बर्तना नूं जाके लाउंदियां ने। उहनां संगतां नूं बेनती है अपने हाथ एक बार जरूर धो लिया करो जी। चल रहा लड़ीवार इतिहास कथा विचार दे नाल आपां जुड़दे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

गुरु रामदास महाराज जी श्री गोविंदवाल साहब दी धरती ते बिराजदे ने। जो घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पकार, जो सर्ब थां ते व्यापक राम है, जो चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। ऐसा ओ निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख वाहे गुरु दा, जो सरगुण स्वरूप है धन गुरु रामदास महाराज जी। श्री गोविंदवाल साहब दी धरती उपर सुभाए मान हन, तमाम संगतां पातशाह दे दर्शन करके

0: टोकरे चुक रहा है, टक मार रहा है, ओदा भाव लोक परलोक सब रजावेगा, मन इश्त ही फल पावेगा।
1: सत कमास जब रहत बताए,
0: एदा कुछ क समा संगत जी अमृतसर साहिब दी धरती ते रहिंदिया बतीत कीता है। ए केवल संगत जी जेड़ी दुख भंजनी बेरी है, ओदे कोल ही महाराज जिया ने सेवा करवाई सी। फिर उथे जदो असमान तो बरखा हुंदी, मीह जल खड़ जांदा संगत जी, ओथे पर संगत जी आ करके जेड़ा ओ कोड़ी सी उने इशनान कीता सी बीबी रजनी दे पति ने, जो पट्टी इलाके दे रहन वाले सन। फिर ओदा कोड़ दूर होया सी, जिथे संगत जी काले कौ चिट्टे हो निकल दे हंस बन बन के निकल दे सन। उदू बाद ते गुरु अर्जन देव जिया ने सारी सेवा आरंभ करवाउनी है चार दवारी दी। फिर अगे संगत जी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी सेवा, ए ते धन गुरु रामदास महाराज जी गुरु अमरदास जिया दे हुक्मां दे नाल सेवा करवा रहे ने। जिस वेले महाराज अमृतसर साहिब दी धरती ते जाके बराज गए, ते चारे दिशावां विच माझे इलाके विच पातशाह दी वडियाई पसरी है।
1: प्रकार मनोरथ मन के
0: फिर संगत जी अनेकां तरीकियां दे मनोरथ लै करके दिली इशामा लै करके
1: करत संपूर्ण सिख नागन के,
0: जेड़े भी गुरु सिख आउंदे पातशाह दे चरण परस दे दर्शन कर दे, मन बांशत ही

करे सरकार हुण जो भी करना इक तन असा ने है मूरे खड़ना करे सरकार हुण जो भी करना।

7000 फौज लै के मुखलत खान हमलावर होया 24 जेठ 1629 ईस्वी पुतली घर दे लागे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह को लैके थापड़ा करके अरदास बाबा बिधि चंद भाई भाना भाई तलोका बहुत सारे गुरु के प्यारे लाल इन्हां पुतली घर दे जाके अगा सामने रोकिया वैरी दा तेगा ते तेगा खड़कियां ए जंग 2 दिन होई है मैं इहदा रिजल्ट कढ़ना चाहुंदा हां। अगले दिन वेख के सिखां दी तेग दे जोर ते मुखलस खान घबरा गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी सारा शाम के बाबी बीबी वीरो दे व्याह दा प्रबंध करके मेरे पातशाह भी आप लोहगढ़ दे किले च दाखिल हो गए। रात दे वेले मुखलस खान घबराए हुए ने एक चिट्ठी एक पत्रका भेजी ऐ गुरु हरगोबिंद फकीरां नूं बादशाहां दे नाल जंग सोचदी नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहण लगे सारा दिन अगों जदों इट दा जवाब पत्थर नाल मिलिया तैनूं हुण पता लगा फकीरां नूं जंग नहीं सोचदी पर तू चढ़ के आया लाहौर तों भेजिया होया सरकार दा तेनू तू भाजी चाड़न वास्ते आया न्यूंदरा तेनू तेग दी धार दे उत्ते तोल के दिता जावेगा इस करके कोई भी किसी गल दी गलती दी जगह नहीं। अगला दिन होया गुरु प्यारे खालसा जीओ 25 जेठ 26 जेठ नू बीबी वीरो दा आनंद कार्ज है ओ चबाल दी धरती ते होना तको जरा। अगला दिन है एक पासे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाबा बिधि चंद भाई पैना इधरों उन्हां ने जदों तोपां चलाईयां शमच बेग ते मारिया गया कल दे जंग विच जंग बेग ते करीम बेग ने जदों एक पासे किले दी बाही जर्जरी कर दित्ती उस वेले भाई पैंदे खान बाबा बिधि चंद बाहर मैदाने जंग च निकले जदों जालमां दे आहू लाए मुखलत खान दी एक आवाज आई हवा दे बुलियां नाल टकराउंदी होई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे कन्नां नाल टकराई कहण लगा जे गुरु एडा महान है एडा वड्डा जरनैल मेरे नाल आके दो हथ करे बगाने पुत्र मरवाउण दा फायदा कीए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कीता इशारा दवल्यों जंग नूं रोक दिता गया। इधरों वधिया मुखलत खान गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने लै के निशाना छाती दा चलाया तीर मुखलत खान ने वागा खिच के घोड़े नूं ताह कर दिता घोड़े दे सामने दिल च तीर वजा घोड़ा दाड़ करदा धरती ते जा गया। मेरे पातशाह कहण लगे मुखलत खान मैं तेनू आखिया है कि जेड़ा तू भाजी लैके आया इहदा निंदरा जेड़ा ओ तेग दी नोक नाल तोल के देना है इस करके जां ते घोड़ा मंगवा लै ते जां फिर मैं भी थले उतर जाना हां घोड़े तों। इधरों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज थले उतरे उधरों मुखलत खान वधिया काली दे नाल इहने पहला वार बड़े जोश नाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह आख के कीता है। मेरे पातशाह ने एकदम पैंतड़ा बदलिया ओ वार नूं रोकिया है इहने दूजा वार कीता है मेरे पातशाह ने ढाल ते रोकिया है तीजा वार करन लगा मरदी हुई जान दे नाल गुरु तक नहीं पहुंचिया। मेरे पातशाह ने सत करतार आके आख्या मुखलस खान तेरे उस्ताद ने तेनू वार करन दी जाच नहीं दसी आ तेनू दसीए मैदाने जंग विच वार एदा नहीं हे इंज करीदा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: एल मकान में लगे है, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटा दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदो मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कर सारे मनुखां दा एक ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नु दिते हुए ने, सीमत ने, ये असीम हो सकते ने। उनु याद कर करके किवें उसनु याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

सेवा बख्शनी, गृहस्थी जीवन दियां खुशियां परिवारक वादे दियां दातां बख्श के निहाल करना जी। बच्चे जोरावर सिंह नूं बोलन दी दात बख्शनी जी।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करन जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुण्य करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुनिया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। एक कदों निकलती है, जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है, उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासा होंगी अंत मनुख कर, कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकल दिए फिर व्यर्थ भी नहीं जाती, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करने है। अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अर्जोई करने, दस्त बस्ता हथानु जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहते ने यक अर्ज, एक मेरी अर्जोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसदे कन आंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकदे, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आउंदियां, उसदी जबान उथे ही आउंदी है, उसदियां अखां उथे ही आउंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरदोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

500 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत, पेशेंस।

जे किसी घर न्याणा होवे कदी किसी कह भी बधाई होवे तुहाडे घर कल भाणा वापर गया तुहाडे घर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया है गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ए सुख भी है ते इहदे विच दुख भी है फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करे हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है मेरी बेनती तो सारे पौड़ी नाल पड़ी पर ध्यान दिया जी अर्थां वाल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जद दिन बंदे दी ईगो मरेगी क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला फिर पौड़ी पढ़ लिए हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोए नानक हुक्म जे बुझे ता खौमे कहे ना कोए ओ खौमे च नहीं कहिंदा मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इसी ते देना है के करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस नूं स्वीकार कर ले अक्सर असी जदो ए मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ए आनंद साहिब च रोज पढ़ने जी जां तिस भाणा तां जम्मिया भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया परिवार भला पाया एक असी घटना अक्सर सुनाने आ भाई भिखारी जी दी मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां चो करनिया ने कि तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा है मैनू मन्नागा अगे असी बाणी चो देखांगे क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलों हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने आ भाई भिखारी बारे ते जेड़ा सिख इहनू मिलन गया उहदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे दा विआह सी आप सब नूं पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इन्ना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जेड़े ने ओ तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई ओही मर गया ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे विआह विच इन्ने साजो समान घर इकट्ठा करी बैठे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।